नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर रिचा और आप सुन रहे हैं 5 VBI 103.1 FM। आज का शो थोड़ा अलग है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात सिर्फ मूवीज की नहीं बल्कि उन सुपर पावर्स की करेंगे जो शायद हम सब के अंदर है, बस उन्हें पहचानना बाकी है। हम सब स्पाइडरमैन, बैट्समैन, सुपरमैन, क्रेश, शक्तिमान जैसे सुपर हीरोज को देखते हुए बड़े हुए हैं। उनकी फ्लाइंग स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर्स देखकर हम सब ने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा, काश मेरे पास भी ऐसी पावर्स होती। लेकिन एक सवाल है दोस्तों, अगर असली सुपर पावर किसी बिल्डिंग से छलांग लगाना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में खुद को संभाल लेना हो तो? अगर असली पावर अपने गुस्से पर कंट्रोल करना हो तो? अगर असली पावर डर के बावजूद सही फैसला लेना हो? और अगर असली पावर अपने लाइफ पर्पस को पहचानना हो? हाल ही में मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हनुमान अंश मूवी थिएटर में देखने का अवसर मिला। सच कहूं दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल मूवी फिल्म नहीं है बल्कि एक ऐसा इनविटेशन है जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। और मुझे ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मल्टी कल्चरल कंट्री में भी लोग इंडियन स्पिरिचुअल स्टोरीज को क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं। दुनिया आज सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, मीनिंग भी तलाश रही है। हाँ, ये बात भी सच है कि पिछले कई वर्षों में बाबा शब्द को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हैं। कुछ लोगों के गलत कामों ने पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर सवाल

0: पता है आपको, ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर भक्ति करनी है ना,
1: तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: बम भोले
1: बम बम भोले। तो दोस्तों आज का ये ट्रेंडिंग सॉन्ग हर किसी की जबान पर है, तो हो भी क्यों ना, इतना मीनिंगफुल गाना जो है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे अपने अंदर की शक्तियों की, भारत की स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में। तो मेडिटेशन, योगा, साइलेंस, डिसिप्लिन, कंपैशन और सर्विस, ये सब कोई पुराने जमाने की बातें नहीं है। आज पूरी दुनिया माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर रिसर्च कर रही है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि रेगुलर मेडिटेशन स्ट्रेस कम करने, फोकस बढ़ाने और इमोशनल बैलेंस बनाए रखने में मदद कर सकती है। शायद हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जिस इनर साइंस की बात की थी, आज दुनिया उसे नए शब्दों में समझ रही है। और वैसे हनुमान अंश अकेली ऐसी फिल्म नहीं है जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया है। स्वदेश ने हमें सिखाया असली सक्सेस सिर्फ

विदेश में नहीं अपने लोगों के लिए कुछ करने में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वदेश फिल्म की। रॉकेट सिंह जो एक मूवी आई थी उसने बताया कि ऑनेस्टी कभी आउटडेटेड नहीं होती। आई एम कलाम एक मूवी आई थी जो कलाम सर पे थी, उसने हर बच्चे को बड़ा सपना देखने का हौसला दिया। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य ने हमें याद दिलाया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपना लक्ष्य पहचानते हैं। और सुपर 30, जी हाँ वो याद है ना मूवी, जैसी ये फिल्म थी जो एक अच्छा टीचर हजारों जिंदगियां बदल सकती हैं उसके बारे में हमें बताती थी। शायद यही वो फिल्म्स हैं जो बॉक्स ऑफिस पर हमेशा रिकॉर्ड्स तो नहीं बनाती लेकिन लोगों की सोच जरूर बदल देती हैं। तो दोस्तों, हम फिक्शनल सुपर हीरोज को देखकर बड़े हुए हैं लेकिन हमारे अपने ग्रंथों में भी हनुमान जी जैसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि भक्ति, विनम्रता, निष्ठा, साहस और सेवा का संदेश देते हैं। शायद इसी वजह से हनुमान जी आज भी करोड़ों लोगों के फेवरेट हीरो हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पावर उनका अहंकार नहीं उनकी विनम्रता थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका शरीर नहीं उनका समर्पण था। और आज शायद दुनिया को भी ऐसे ही सुपर पावर्स की जरूरत है। तो आज का शो सिर्फ म्यूजिक का नहीं है, एक छोटी सी जर्नी है अपने अंदर छिपी हुई उस शक्ति को पहचानने का जो शायद किसी मैजिक से नहीं बल्कि करेज, मेडिटेशन, फेथ, लव और कंसिस्टेंसी से जगती है।

दोस्तों एक बात तो बिल्कुल सही है कि दुनिया बदलने से पहले अगर इंसान खुद को बदल ले तो शायद दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मैं हूँ रिचा और आप सुन रहे हैं 5VBI 103.1 FM। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग और अपनी इनर सुपर पावर्स पर भरोसा रखिए, क्योंकि रियल हीरोज हमेशा हमारे अंदर ही पैदा होते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं 5VBI। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और सुनते हैं कुछ और जबरदस्त गाने, कुछ और बातें होंगी रिचा के साथ।

0: सुन रहे हैं हिंदी प्रसारण फ्राइडे विद रिचा 103.1 FM पर।
1: Join Richa every Friday at 5 p.m. to enjoy some soulful Bollywood music.
2: जब दिल ना करे घर पे खाने का या बनाने का तो क्या करे?
3: भैरवी किचन है ना,
2: घर जैसा स्वाद और हाइजीन अगर दोनों ना मिले तो?
3: अरे भैरवी किचन है ना,
2: चटपटा भी हो और ज्यादा हैवी भी ना लगे।
3: भैरवी किचन है ना,
2: तो जल्दी से एड्रेस बताओ।
3: पैना हिल्स, वेस्ट एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया 5096।
2: और फोन नंबर
3: 04116511104। भैरवी किचन एक बार जरूर ट्राई करें।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक।
4: रंग रेजा

तो दोस्तों अब समय आ रहा है धीरे धीरे आपसे बाय बाय कहने का। तो आज हमने बात की सुपर हीरोज की, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने अंदर छुपे उस हीरो की जो हर इंसान के अंदर होता है। शायद भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एंशिएंट विजडम है, एक ऐसी विरासत जिसने हमेशा हमें सिखाया है कि असली जीत किसी और पर नहीं होती, अपने मन पर होती है। सबसे बड़ी शक्ति बाहुबली नहीं आत्मबल है, और सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का बेहतर इंसान बन जाना है। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, पर जी हाँ, एक भारत हमेशा हमारे दिल की धड़कन में बसता है। वो भारत जो सिर्फ एक देश नहीं, एक एहसास है। वो भारत जो हमें जोड़ता है अपनी भाषा से, अपने म्यूजिक से, अपने संस्कारों से, और सबसे बढ़कर अपने मानवीय मूल्यों से। मानते हैं ना आप भी? तो आज का ये जो आखिरी सॉन्ग है वो उस भारतीय दिल की आवाज़ है जिसने कभी अपने वतन से दूर रहकर जरूर याद किया होगा। तो इस गाने के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आज के शो ने आपको कुछ भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपने रूट्स या अपनी जर्नी की याद दिलाई है, तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। आपकी बातें सुनकर, आपके विचार सुनकर मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो मेरा ईमेल आईडी है radiowithricha@gmail.com। बताइए आज के शो का कौन सा थॉट आपके दिल को छू गया। आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा, जी हाँ, 103.1 FM पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और जहाँ भी रहिए अपने अंदर अपना भारत जिंदा रखिए। नमस्कार, और मिलते हैं अगले फ्राइडे एक नई सोच, नए म्यूजिक और नई स्माइल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।